नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। नौजवानों

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehapoorn amantran. Shanivar 1 August ko subah 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagy. Ravivar 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200. जय गुरुदेव.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
12: लेडीज एंड जेंटलमैन,

लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, लेकिन मम्मी के सामने मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोलने से पहले उनका ही वाईफाई पासवर्ड याद से पूछ लेना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लव मिर्ची।

करने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है.
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
10: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

back once again. People, Club Mirchi जा रही है with DJ Richard and Mirchi और Yontika. Life में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को परमिशन देनी पड़ती है. इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी के लिए किसी अप्रूवल कमिटी का वेट मत करो यार. चलो

फ्रीडम को सिर्फ अपना राइट समझेंगे, इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट रहेगी, है कि नहीं? क्लब मिर्ची जारी है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका के साथ। वेलकम बैक पीपल। थोड़ा ड्यूटी भी और थोड़ा डिग्निटी भी जरूरी है, थोड़ा दूसरों के लिए स्पेस भी बनाओ और नाचो हमारे साथ जब तलक तू बोले तब तलक।

सिर्फ एक ही गुजारिश है, इंडिपेंडेंट होने से अपनी आवाज को आप सुन सकते हो, लेकिन इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनो कि दूसरों की आवाज को ही म्यूट पे डाल दो। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ। आप चाहे या ना चाहे, हम हैं आपके साथ।

देश सिर्फ मैप पे एक शेप है, ये वो जगह है जहाँ हमारे चॉइसेस का इम्पैक्ट किसी और की लाइफ पे पड़ता है। सोचो फिर आजादी सेलिब्रेट करो, आज तो तन्हा नहीं हो आप। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोटिका के साथ।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका के साथ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसका मतलब हर बात पे डिसएग्री करना नहीं होता, कभी कभी अपनी फेवरेट ओपिनियन को भी बोलना पड़ता है, भाई तू गलत है। दैट्स फ्रीडम टू, लेट्स एक्सरसाइज दैट, लेट्स ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, दिलजीत दोसांझ इन द हाउस लेडीज एंड जेंटलमैन।

वंस अगेन इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा मैजिक, आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो। बस एक डिस्क्लेमर है, एक्सक्यूजेस का पेन यूज करके बेस्ट सेलर नहीं बनना है, ठीक है। और जादू तो मिलता ही रहेगा आपको क्लब मिर्ची पे, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल, ठीक है जो है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ। देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, बिहेवियर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यूट तोड़ना, रूल्स तोड़ना, प्रॉमिस तोड़ना, ये इंडिपेंडेंस के प्रीमियम फीचर्स तो नहीं हो सकते। चलो अभी आवन

वेलकम बैक, डीजे रिचर्ड मिर्ची और ओंतिका आपके साथ। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी। अपनी कहानी खुद लिखो, लेकिन दूसरों की कहानी में अनवांटेड विलेन मत बनो। तेरी मेरी कहानी जारी रहेगी ना दोस्त, क्लब मिर्ची पे।

Welcome back once again, people. Club Mirchi जारी है with DJ Richard and Mirchi Oyontika. Life में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को परमिशन देनी पड़ती है. इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी के लिए किसी अप्रूवल कमेटी का वेट मत करो यार. चलो

को रिपीट मत करो जो गलती कर चुके हो, उसको ट्रेडिशन मत बना। अपग्रेड योरसेल्फ एंड बैड हैबिट्स के लिए नो एंट्री। क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्डन मिर्ची और यौन टिका फिलहाल आपके लिए सेकंड हैंड टूटी फूटी जवानी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल दिखा। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अपनी चॉइसेस पे खुद खड़े रहना। फैशन हो, करियर हो, लव हो, दुनिया एडवाइस देगी, बिल आपको ही भरना है। ऑन दैट नोट चलो धुरंधर से सुनते हैं आरी आरी।

रूल है, जो दिल करे करो, बस दूसरों का दिल तोड़ना उस कैटेगरी में नहीं आता। इश्क जलाकर आगे बढ़ेंगे क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और इस सोनी दे नखरे आपको प्यारे ही लगेंगे।

मैं से हम तक जाना भी है इंडिपेंडेंस का मतलब. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका. बिकॉज़ एक कंट्री तब स्ट्रांग होती है जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस टीम वर्क में कन्वर्ट हो जाए. जैसे अल्फाबेट में सारे लेटर्स जरूरी है, ए बी

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

वेलकम बैक वंस अगेन पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को परमिशन देनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी के लिए किसी अप्रूवल कमेटी का वेट मत करो यार। चलो

रिपीट मत करो, जो गलती कर चुके हो उसको ट्रेडिशन मत बनाओ। अपग्रेड योरसेल्फ एंड बैड हैबिट्स के लिए नो एंट्री। क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्डन मिर्ची और यौन टिका फिलहाल आपके लिए सेकंड हैंड टूटी फूटी जवानी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: हाँ, और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
7: On a ride.

इंडिपेंडेंस का मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, लेकिन मम्मी के सामने मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोलने से पहले उनका ही वाईफाई पासवर्ड याद से पूछ लेना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लव मिर्ची।

हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

जी जा रही है वो डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंगिका। इंडिपेंडेंट सिटीजंस के ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, लेकिन ड्रीम्स के साथ अलार्म भी लगाओ, बिकॉज फ्रीडम विदाउट एक्शन इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल डे ड्रीम। गॉट इट?

है तो सेलिब्रेट भी फुल वॉल्यूम पे ही करेंगे, बस नेबर्स को याद दिला दे उनके भी फंडामेंटल राइट्स है, स्पेशली स्लीप. सो माइंड दैट वॉल्यूम. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो दिगा. टाइम टू गो.

जन्म समझा करो टुडेज इंडिपेंडेंस डे थोड़ा लाउड म्यूजिक तो बनता है। इंडिपेंडेंस डे पे यंग इंडिया को एक विश, सिर्फ जवान नहीं जागरूक भी रहो। एनर्जी तो है ही, यू समथिंग दैट मेक्स टुमारो बेटर। आई एम गोना फॉलो दैट फ्रॉम टुडे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन।

देश से प्यार करना इजी है, एक दिन फ्लैग लगाओ, फोटो लो, स्टेटस लगाओ, रियल लव रोज अपने आसपास को थोड़ा बेटर छोड़ना देन यू फाउंड इट। माँ तुझे सलाम, वेलकम टू क्लब मिर्ची।

याद रखिएगा, जब कंधे से कंधा मिलता है तब एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका, हम है सुल्तान इस देश के।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit Virani Jewelers.

रन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, बट रिमेम्बर रेस सिर्फ जीतने के लिए नहीं, किसी और को गिरने से बचाने को भी विक्ट्री ही बोलते हैं. वेव दैट फ्लैग ऑफ ब्रदरहुड ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन पिका.

इंडिपेंडेंस का मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, लेकिन मम्मी के सामने मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोलने से पहले उनका ही वाईफाई पासवर्ड याद से पूछ लेना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लव मैरिज।

हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए।

वेलकम बैक। इंडिया को जोड़ने के लिए फेविकॉल नहीं चाहिए, बस थोड़ा टॉलरेंस, थोड़ी ह्यूमर और एक दूसरे को स्पेस देने की आदत बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखती है कि नहीं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

तरह के सिटीजन है हमारे देश में। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन देखा, लेकिन फ्रीडम का मतलब है अपने वर्जन के 100 तरीके डिस्कवर करना। किसी और के टेम्पलेट में फिट होने की जरूरत नहीं, यू डू यू डूड, कीप दैट इंडिविजुअलिटी। इसके साथ क्या खूब लगती हो।

इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। वेल, इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ आजादी मिलना नहीं, आजादी का मतलब है अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि फ्रीडम में फ्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल फ्री नहीं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, एंड विद दैट आई स्टार्ट टुडेस क्लब मिर्ची इंडिपेंडेंस डे स्पेशल विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका। जय हो।

0: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।
1: नौजवानों

इंडिपेंडेंस का मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, लेकिन मम्मी के सामने मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोलने से पहले उनका ही वाईफाई पासवर्ड याद से पूछ लेना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्लब में जाइए।

हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानी ज्वेलर्स.com।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,

फ्रीडम को सिर्फ अपना राइट समझेंगे, इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट रहेगी, है कि नहीं? क्लब मिर्ची जारी है डीजे रिचर्डन मिर्ची और योंतिका के साथ, वेलकम बैक पीपल। थोड़ा ड्यूटी भी और थोड़ा डिग्निटी भी जरूरी है, थोड़ा दूसरों के लिए स्पेस भी बनाओ और नाचो हमारे साथ जब तलक तू बोले तब तलक।

से सिर्फ एक ही गुजारिश है, इंडिपेंडेंट होने से अपनी आवाज को आप सुन सकते हो, लेकिन इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनो कि दूसरों की आवाज को ही म्यूट पे डाल दो। क्लब मिर्ची जारी है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ। आप चाहे या ना चाहे, हम हैं आपके साथ।

देश सिर्फ मैप पे एक शेप है, ये वो जगह है जहाँ हमारे चॉइसेस का इम्पैक्ट किसी और की लाइफ पे पड़ता है। सोचो फिर आजादी सेलिब्रेट करो, आज तो तन्हा नहीं हो आप। क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

वेलकम बैक वंस अगेन पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को परमिशन देनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी के लिए किसी अप्रूवल कमेटी का वेट मत करो यार। चलो

रिपीट मत करो जो गलती कर चुके हो, उसको ट्रेडिशन मत बना। अपग्रेड योरसेल्फ एंड बैड हैबिट्स के लिए नो एंट्री। क्लब मिर्ची मिर्ची जब चौटन मिर्ची और यौन टिका, फिलहाल आपके लिए सेकंड हैंड टूटी फूटी जवानी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

वहीं पर क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका के साथ। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसका मतलब हर बात पे डिसएग्री करना नहीं होता, कभी कभी अपनी फेवरेट ओपिनियन को भी बोलना पड़ता है, भाई तू गलत है। दैट्स फ्रीडम टू, लेट्स एक्सरसाइज दैट, लेट्स ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, दिलजीत दोसांझ इन द हाउस, लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

वंस अगेन इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा मैजिक, आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो। बस एक डिस्क्लेमर है, एक्सक्यूजेस का पेन यूज करके बेस्ट सेलर नहीं बनना है, ठीक है? और जादू तो मिलता ही रहेगा आपको क्लब मिर्ची पे। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ। देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, बिहेवियर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यूट तोड़ना, रूल्स तोड़ना, प्रॉमिस तोड़ना, ये इंडिपेंडेंस के प्रीमियम फीचर्स तो नहीं हो सकते। चलो अभी आवन

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Tera kya hoga Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
4: Ab mirchi kha.
6: Radio Mirchi. It's hot.
7: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go
9: on a ride.

समझा करो टुडेज इंडिपेंडेंस डे थोड़ा लाउड म्यूजिक तो बनता है। इंडिपेंडेंस डे पे यंग इंडिया को एक विश, सिर्फ जवान नहीं जागरूक भी रहो। एनर्जी तो है ही, यूज समथिंग दैट मेक्स टुमारो बेटर। आई एम गोना फॉलो दैट फ्रॉम टुडे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Saath Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
4: spiders have free life cycle
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeetu Raj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज
1: साथ Jeetu Raj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
8: On a ride.
9: Club Mirchi.

वेलकम बैक, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी। अपनी कहानी खुद लिखो, लेकिन दूसरों की कहानी में अनवांटेड विलेन मत बनो। तेरी मेरी कहानी जारी रहेगी ना दोस्त, क्लब मिर्ची पे।

मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल दिखा। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अपनी चॉइसेस पे खुद खड़े रहना। फैशन हो, करियर हो, लव हो, दुनिया एडवाइस देगी, बिल आपको ही भरना है। ऑन दैट नोट, चलो धुरंधर से सुनते हैं आरी आरी।

इम्पोर्टेंट रूल है, जो दिल करे करो, बस दूसरों का दिल तोड़ना उस कैटेगरी में नहीं आता। इश्क जलाकर आगे बढ़ेंगे क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और इस सोनी दे नखरे आपको प्यारे ही लगेंगे।

मैं से हम तक जाना भी है इंडिपेंडेंस का मतलब. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका. बिकॉज एक कंट्री तब स्ट्रांग होती है जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस टीम वर्क में कन्वर्ट हो जाए. जैसे अल्फाबेट में सारे लेटर्स जरूरी है, ए

वेलकम बैक वंस अगेन पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को परमिशन देनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी के लिए किसी अप्रूवल कमेटी का वेट मत करो यार। चलो

उसको रिपीट मत करो जो गलती कर चुके हो, उसको ट्रेडिशन मत बना। अपग्रेड योरसेल्फ एंड बैड हैबिट्स के लिए नो एंट्री। क्लब मिर्ची में जी जरूर चौटन मिर्ची और यौन टिका, फिलहाल आपके लिए सेकंड हैंड टूटी फूटी जवानी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

देश से प्यार करना इजी है, एक दिन फ्लैग लगाओ, फोटो लो, स्टेटस लगाओ। रियल लव, रोज अपने आसपास को थोड़ा बेटर छोड़ना देन यू फाउंड इट। माँ तुझे सलाम। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं, कलेक्टिव स्ट्रेंथ था। इसे याद रखिएगा, जब कंधे से कंधा मिलता है तब एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका, हम है सुल्तान इस देश के।

गार्डन मिर्ची और यौन विकास। इंडिपेंडेंट सिटीजंस के ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, लेकिन ड्रीम्स के साथ अलार्म भी लगाओ, बिकॉज फ्रीडम विदाउट एक्शन इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल डे ड्रीम। गॉट इट?

तो सेलिब्रेट भी फुल वॉल्यूम पे ही करेंगे, बस नेबर्स को याद दिला दे उनके भी फंडामेंटल राइट्स है, स्पेशली स्लीप. सो माइंड दैट वॉल्यूम. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो दिखा. टाइम टू गो जेंटलमैन.

सपने चुराने मत देना और किसी और के सपने का क्रेडिट भी मत चुरा लेना। इंडिपेंडेंट रहो पर ओरिजिनल रहो। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो देगा।

0: है।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi. Fresh Maal.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: जो सुनता है सबकी करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सिस्टर श्रेया की नजर में असली आजादी का क्या अर्थ है, आइए उन्हीं से समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं अपनी छोटी बेटी से इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात कर रहा था और उसका जो जवाब था, इट जस्ट सॉर्ट ऑफ मेरा नजरिया उसने बदल दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ये जवाब देगी। मैं उसे ऐसे ही पूछ रहा था कि इंडिपेंडेंस डे जो है उसका बेस्ट पार्ट तुमको क्या लगता है। तो उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिधर भी जाती हूँ वहां पे मुझे फ्लैग नजर आता है, और जहाँ भी बिल्डिंग्स होते हैं, लाइट्स होती है रात को, वो उन्हीं कलर्स में सजाए जाते हैं। लोगों का जो पहनावा है वो भी उन्हीं तीन कलर्स में होते हैं, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है एंड आई रियली फील नाइस। और वो बच्चों की जो प्योरिटी और एंथुजियाज्म होता है उसके साथ वो कह रही थी। उसने कहा यही यूनिटी और फ्रीडम है, बेस्ट एहसास उसके लिए। और मैं सोच रहा था बहुत खूबसूरत बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपके लिए आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, सिंपल शब्दों में फ्रीडम, इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है?
4: See, when we talk about freedom, the word is free. आप फ्री फील करना चाहते हैं
3: जी।
4: और जब आप फ्री फील करना चाहते हैं, माना आप किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे फिजिकली हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, उसी तरह से इमोशनली हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है दैट माई थॉट्स एंड माई फीलिंग्स, जो मैं फील कर रहा हूँ इस समय, वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। पर मोस्टली हम क्या कहते हैं अपने मूड को लेकर के, खुश हैं तो इस वजह से, उदास हैं तो इस वजह से, मूड अच्छा है तो इस वजह से, बुरा है तो इस वजह से। सो व्हाट आई एम फीलिंग, आई फील इट इज ऑलवेज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो परिस्थिति है, लेकिन वो मुझे कभी भी सच्चे फ्रीडम का अनुभव नहीं कराएगा, क्योंकि आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन एंड पीपल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप मेंटल इंडिपेंडेंस का असली मतलब जानते हैं? आइए इस अनोखे नजरिए को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आप कह रहे हैं कि आपके लिए सही मायने में फ्रीडम या इंडिपेंडेंस है जब हम स्वतंत्र मानसिक रूप से हो जाएं।
4: एब्सोल्युटली, भले परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी स्टेबल रहना, खुश रह पाना, शांत रह पाना, एम आई एबल टू डू दैट?
3: सिस्टर, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और कई बार हम सुनते भी हैं, लेकिन जब एक ऐसी परिस्थिति आती है जो आपने कहा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं अंदर बहुत शांत हूँ, लेकिन जब तक मैं उस परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता या प्रोटेस्ट नहीं कर सकता या ऐसी चीज नहीं कर सकता जिससे वो बदलाव ला पाऊं मैं, तब तक वो बदलेगी कैसे?
4: चेंज लाना है बाहर
3: जी,
4: लेकिन बाहर जो चेंज लेकर के आना है वो बाहर जब तक वो चीज ठीक नहीं है, अगर वो आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर रही है
3: जी,
4: तो वो डिस्टर्ब्ड मन चेंज लेकर आए और एक स्टेबल मन चेंज लेकर आए, चेंज तो फर्क तो है, क्योंकि वो चेंज की जर्नी कितनी भी हो सकती है ना, उसमें एक दिन भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, छह महीना भी लग सकता है। यू ट्राइंग टू चेंज अ पॉलिसी, आप किसी सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं, कई चीजों को तो हम चेंज कर नहीं सकते लाइफ में, कभी कभी कई चीजें होती हैं जो
3: कंट्रोलेबल नहीं है,
4: आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कई बार जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली कई चीजों में हमें पता होता है ना कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बारिश है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसकी पर्सनालिटी है, वो रोज गुस्सा करते हैं, वो थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं, वो क्रिटिकल नेचर के हैं, उनका व्यवहार चेंज करना तो आपके कंट्रोल में नहीं है।
3: सही बात है।
4: तो उस चीज को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो राइट है, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब कर
3: सके। बहुत बढ़िया। और ये MS धोनी में बहुत कमाल कहते हैं कि मैं हमेशा उस पे फोकस करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में,
4: जो मेरे कंट्रोल में,
3: बाकी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं तो फोकस करके।
4: तो जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करना, माना दैट पर्सन और दैट थिंग वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपको हिला नहीं सकते।
3: बिल्कुल।
4: अच्छा, अब जो आप चेंज कर सकते हैं करें, लेकिन उससे पहले आपको कोई भी चेंज लेकर आना है, कहते हैं बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो अगर आप कोई भी पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं तो कम से कम आपकी दृष्टि वृत्ति, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव तो होनी चाहिए ना। भले बाहर आपको उसके लिए प्रोटेस्ट भी करना है, आवाज भी उठाना है, लेकिन अगर वो तरीका सही होगा तो कल को कोई रिजल्ट आएगा।
3: बहुत बढ़िया।
4: नहीं तो वो बात कई बार सुलझने की जगह और बिगड़ जाती है।
3: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की सोच संस्कार और जज्बे का प्रतीक क्यों है आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इंडिपेंडेंस डे जब भी आता है ना तो मुझे एक ड्रिल याद आता है जो शायद आज लुप्त हो गई है। स्कूल के दिन याद आते हैं। स्कूल में तीन चीजें हमेशा होती थी इंडिपेंडेंस डे के दौरान। एक है कि हमें स्कूल जाके फ्लैग होस्टिंग करना पड़ता था और जब वो झंडा फहराया जाता था ना, पता नहीं क्यों बहुत प्राइड महसूस करता था मैं। फिर गला फाड़ के हम नेशनल एंथम गाते थे बहुत प्राइड के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, बच्चों के इनोसेंस के साथ। और उसके बाद ये ड्रिल था हर साल कि एक प्रोमिनेंट फेस हमारे स्कूल में आते थे और वो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में या किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में हमें व्याख्यान देते थे, लेक्चर देते थे और बड़ा अच्छा लगता था सुन के। उसके बाद जब हम बड़े हुए, सोसाइटी में रहने लगे तो कुछ कुछ सोसाइटीज में भी ऐसा प्रोग्राम होता था। धीरे धीरे ना हम सब व्यस्त हो गए और ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी से गायब हो गया। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था, नोस्टैल्जिया में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं जहाँ शायद इंडिपेंडेंस डे के बारे में या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में या वो झंडा फहराने वाला जो इतनी ब्यूटीफुल सी चीज़ होती थी या नेशनल एंथम गाने का जो मौका मिलता था हमको, वो कम्युनिटी में साथ रहने वाली बात अब नहीं रही, तो आज हम उसको वापस जिंदा कैसे कर सकते हैं अपने आसपास?
4: See, आज भी हम इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट करते ही हैं। मैं समझती हूँ स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर, यहाँ तक कि कम्युनिटीज के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है।
3: बिल्कुल होता है।
4: लेकिन केवल ये एक सेलिब्रेशन नहीं रहे, ये एक जेंटल रिमाइंडर भी है कि हम एक फ्री इंडिया में रहते हैं
3: जी।
4: और उसका एक ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है। कभी कभी हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं और इसीलिए आप देखें कि आज हम फ्री इंडिया में रहने के बाद भी, इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी कई बार कंप्लेन करते रहते हैं, आपस में ही झगड़ते रहते हैं। सो आई फील दैट पर्टिकुलर डे ये हमें रियलाइज कराता है कि एक टाइम वो भी था जहाँ पर बहुत त्याग था, जहाँ पर बहुत सफर करना पड़ा, और आज वो टाइम है कि जब हम फ्री इंडिया में रह रहे हैं तो उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और जिन्होंने ये हमें इंडिपेंडेंस दिलाई है उसके प्रति भी दिल से एक दुआ होनी चाहिए। दैट्स हाउ इट्स ट्रू वे टू सेलिब्रेट और फिर उस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना है। बाकी आज भी मैं समझती हूँ कि जब हम झंडा लहराते हैं या नेशनल एंथम होता है वो प्राइड तो हम फील करते हैं लेकिन एक दिन के लिए होता है। जरूरी है कि वो चीज हम हर दिन फील करें, उस चीज को सदा स्मृति में रखें और उसको कैरी फॉरवर्ड करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आजादी का जश्न सिर्फ 15 अगस्त तक सीमित होना चाहिए या हम इसे हर दिन अपनी जिंदगी में जी सकते हैं? आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये सेलिब्रेशन रोज नहीं होता और हमारे लिए मानसिक रूप पे हम व्यस्त हो जाते हैं और चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में आज भी ये प्रथा जारी है। लेकिन ज्यादातर जब आप इंडिपेंडेंट लिविंग कर रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आसपास हो रहा हो।
4: हम रोज तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो वो दिन रिमाइंडर का काम करता है। लेकिन अब उस रिमाइंडर को अपनी अवेयरनेस में रखना हमारा काम है। तो एक फ्री इंडिया के हिसाब से एक व्यक्ति, आई थिंक द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट इज योर कैरेक्टर। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप एक इंडियन हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपका जो कैरेक्टर है वो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करता है।
3: क्या बात?
4: जब आप उस कंट्री में रहें, आप बाहर जाते हैं, सिंपल चीज है। अगर आप अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, आप हार्डवर्किंग हैं, सिंसियर हैं, काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, लविंग हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, आपके अंदर हेट्रेड नहीं है, हर कम्युनिटी के प्रति रिस्पेक्ट है, हर कम्युनिटी के प्रति आपके दिल में जगह है, आई थिंक दैट्स हाउ यू सेलिब्रेट। दैट्स व्हाट अ ट्रू इंडियन इज।
3: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: देश के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं बल्कि कौन से छोटे छोटे कर्म जरूरी होते हैं, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बिना प्रीची साउंड किए और मैं फेक भी नहीं साउंड करना चाहता, मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस को जेन्युइनली सेलिब्रेट करने के लिए आज क्या करना चाहिए? बिकॉज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बहुत दूर है, हमने आदों में से हमने तो देखा भी नहीं है, हिस्ट्री बुक्स में ही रह गई है वो। तो आज हमें अगर कुछ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं?
4: So I think when you talk about independence, आपको जो पहली चीज आती है कि हम फ्री कंट्री हैं, फ्री होने के कारण हम अपनी रीति से सब कुछ कर सकते हैं,
3: right.
4: और जब अपनी रीति से कर सकते हैं, मतलब वी कैन क्रिएट अ कंट्री जिसमें पीस और हैप्पीनेस है। आई पर्सनली फील कि इस समय अगर हम सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, सिर्फ अपनी
3: जी,
4: अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिहेवियर की, वर्ड्स की, थॉट्स की, कैरेक्टर की, तो हम एक बहुत ब्यूटिफुल कंट्री क्या वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं
3: जी।
4: हमारा जो सारा फोकस रहता है कई बार टू चेंज अदर पर्सन और टू चेंज द सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं करना चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन पहली चीज जो करनी होती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की उठानी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ही जो है, इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड।
3: बिल्कुल सही बात,
4: रिस्पॉन्सिबिलिटी माना एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तो कुछ भी हमारे अनुसार नहीं होता है, इवन दो वी आर लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है
3: जी।
4: लेकिन उस समय पर जो हमारी एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, इफ आई कैन डू इट विद पीस, लव, हैप्पीनेस, केयर, कंपैशन, वो अगर हम बिल्ड कर सकते हैं, आई थिंक टुगेदर वी कैन बिल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on Mirchi. It's hot.

0: Anishk, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
4: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
3: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
4: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस, जिस पर सब करे भरोसा।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
7: नो!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
12: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप जानते हैं कि हर छोटा कंट्रीब्यूशन देश को बदलने की ताकत रखता है? आइए इस पावर को पहचानें और अपने अंदर जगाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो अक्सर ये सुनने को मिलता है, यार मैं क्या कर सकता हूँ, अभी सिस्टम ही ऐसा है या चीज ही ऐसी है या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है या दुनिया ऐसी है या सोसाइटी क्लाइमेट, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में क्या बोल सकते हैं उनको?
4: हम सब कुछ ना कुछ लेवल पर कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं
3: जी।
4: एक है इंटरनली अपने को पीसफुल रखना, वो एक चीज है,
3: सही बात।
4: लेकिन एक्शन लेवल पर भी हम किसी न किसी रीति से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। आपने क्लाइमेट की बात करी, क्लाइमेट में अगर हम थोड़ा बहुत भी, हर पर्सन सोचता है कि मुझे रीयूज करना है,
3: सही बात,
4: रिसाइकल करना है,
3: बिल्कुल,
4: रिफ्यूज करना है, रिड्यूस करना है, 4 R भी अगर हम याद रखते हैं कोई भी चीज को खरीदने से पहले, क्या हम इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो मुझे कई बार एक बहुत स्टोरी याद रहती है और अच्छी लगती है कि एक बार ही सागर के किनारे पर वो लहर के कारण बहुत सारे स्टारफिश इकट्ठी हो गई थी,
3: बीच पे आ जाती हैं,
4: और एक छोटा सा बच्चा एक एक को उठा करके वापस सागर में डाल रहा था।
3: अरे वाह।
4: लेकिन वो हजारों थी वहां पर,
3: सही बात।
4: तो किसी ने आकर के कहा कि ये आप मना उस बच्चे को, इससे क्या फायदा होगा, इससे इतनी मेहनत करने से ये तो हजारों हैं। तो उसके हाथ में एक स्टारफिश थी, तो उसने कहा था इसको फायदा होगा।
3: वाओ,
4: आई मीन व्हाट आई एम डूइंग मींस टू दिस वन स्टारफिश। सो मे बी हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, सारे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं ना। और इसीलिए जिस समय हम कुछ करते हैं तो फिर फाइनली वी आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो कंप्लेन नहीं कर रहा था, ब्लेम नहीं कर रहा था, खाली बैठ करके देख नहीं रहा था, लेकिन हम उधर थे जहां पर हमने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: It's 7:30 a.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस, जिस पर सब करे भरोसा.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.

हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: गुड़िया पटना से लिखती हैं सिस्टर कि मैं मेरे बेटे को स्कूल जाने और पढ़ाई में मन लगाने के लिए कैसे समझाऊं। दिन भर कमरे में मोबाइल पर गेम्स खेलता है और रील्स देखता रहता है। मैं रोज उसके लिए नाश्ता और लंच तैयार करती हूँ, उसे जगाती हूँ, लेकिन जब वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे, लेकिन वो गेमिंग में करियर बनाना चाहता है। उसे पढ़ाई के लिए कैसे समझाऊं या खुद को कैसे संभालूं?
3: अगर करियर तक की बात है तो ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा है और अगर उसके पास ये स्किल है, अभी वो देखना पड़ेगा कि ये एडिक्शन है
2: या स्किल
3: कि ये एक स्किल है, क्योंकि गेमिंग में भी जो जा रहे हैं उनके पास स्किल तो है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि पेरेंट्स हैं, शुभावना होती है, तो वो जब हमारी हॉबीज को देखते हैं तो हमारे कल्चर में कई बार लगता है इसका कोई करियर थोड़ी ना बन सकता है, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, स्पोर्ट होगा। बट अगर उस बच्चे के अंदर स्किल है और वो बच्चा उसके अंदर करियर बनाना चाहता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा फियर लगता है तो बच्चे के साथ बात करके कहना चाहिए कि जैसे क्रिकेट के लिए हम कई बार बात करते हैं, कई पेरेंट्स हमें मिलने आते हैं, हर साल 11 लाख 12 लाख बच्चे होते हैं, पर सिलेक्ट कितने होते हैं उसके अंदर से?
2: बहुत कम।
3: 11 की टीम में से भी कितने तो रिपीटेड प्लेयर्स होते हैं, तो जो एक्चुअली में खेलते हैं वो बहुत कम होते हैं इंडिया के लिए। तो उनका जो फियर है और उनका जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन होता है। तो उसमें एक पेरेंट को कहना कि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिन के 2 घंटे 4 घंटे आपको पढ़ना ही है, आपको डिग्री लेनी है, लेकिन बाकी 6 घंटे अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं सो वी विल सपोर्ट यू। बट वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी करियर में आपको लगता है कि थोड़ा सा अनसर्टन है तो फिर एक ऑप्शन मतलब सपोर्ट भी करें, वो मेहनत भी करें, पर दूसरा ऑप्शन ओपन भी होना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
4: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
5: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर प्रभात ज्योति ने एक सवाल लिखा है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें।
3: एक सवाल हमारे पास कई लोगों का आता है, पर इट्स अ गुड थिंग कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनको गुस्सा आता है और नहीं करना चाहिए। तो गुस्से को कम करने के लिए तो गुस्से के रूट पर जाना पड़ेगा कि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि एक अपेक्षा होती है कि सामने वाला मेरे अनुसार करे। एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं।
2: अच्छा।
3: और फिर वो हर्ट धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। और मुझे ये लगता है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है, नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
2: हाँ।
3: ये तो बहुत जायज सी बात है ना।
2: सही बात।
3: समय पर आना, सफाई रखना, टाइम पर खाना खाना, पढ़ाई पढ़ लेना, मतलब ये तो करना ही होता है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा। और हम इसको धीरे धीरे धीरे धीरे जस्टिफाई करते जाते हैं, फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है, फिर पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं मैंने गुस्सा किया नहीं, मुझे गुस्सा
2: आ गया।
3: और फिर हम कहते हैं उसने काम ही ऐसा किया,
2: उसने दिलवाया।
3: विच मीन्स अब वो क्या बन गया, वो संस्कार बन गया, पैटर्न बन गया, आपको पता भी नहीं चल रहा कि कब आ रहा है। नाउ बार बार आपको अपने को रिमाइंड करना पड़ेगा सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। ये बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, तो भी वो व्यक्ति अलग है। और वो अपने अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार बिहेव करेगा। वो बिहेव जो कर रहा है उस चीज का मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़े और मैं ही डिस्टर्ब हो जाऊं, ये मेरे मन की कमजोरी है। तो मुझे अपने को पावरफुल बनाना है और ये पावर किसी को नहीं देनी कि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके। एंड देन आई कंटिन्यू टू टेल देम, 100 बार भी बोले, बच्चे को पढ़ने के लिए बोलना है 100 बार भी बोले। कई मदर्स कहती हैं पहले हम बहुत बोलते थे ना,
2: अब बोलना ही बंद कर दिया, वो नहीं करें।
3: तो दोनों गलत है,
2: क्योंकि बहुत बोल रहे हैं, मन में गुस्सा है,
3: मन में गुस्सा, किनारा कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं निभा रहे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मतलब है आप किसी के बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और आप कम्प्लीट स्टेबिलिटी के साथ, प्यार के साथ अपनी बात बार बार कह रहे हैं।
2: बहुत बढ़िया। वैसे भी मुझे लगता है कि जब आप गुस्सा करते हैं आप अपने आप को ही हानि पहुंचाते हैं ज्यादा। गौतम बुद्ध की बहुत प्यारी लाइन है कि यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर।
3: एंगर इज द पनिशमेंट,
2: राइट?
3: एंगर इज द पनिशमेंट। जिस समय आप गुस्सा कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, हर सेल आपका बॉडी का डैमेज हो रहा है। उन दिनों में आप देखें, कोविड के दिनों में सबके पास ऑक्सीमीटर होता था। अभी किसी को गुस्सा आए ना, धीरे से उसके फिंगर पर लगा दें। आपको दिखाई देगा कि सारे जो पैरामीटर्स है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज डैमेजिंग माय बॉडी। और कभी कभी ये करके देखें कि जो कर रहा है और जिस पर कर रहा है, दोनों पर लगा करके देखें और देखना डैमेज ज्यादा किसको है,
2: जो कर रहा है उस पे।
3: या जिसके ऊपर हो रहा है वो तो कई बार यूज्ड टू हो जाता है।
2: यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर।
3: एंगर इज द पनिशमेंट। उसी समय आप उस दुख से, डिस्कम्फर्ट से, अनीस से गुजरेंगे ही, सो आपका ही नुकसान है उसके अंदर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
7: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छे आंगणे. चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200. जय गुरुदेव.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
10: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क. सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: अच्छा बहुत.

0: ही चलेगी।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। हरिया मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
6: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
5: संडे अगस्त 23rd 1-6 PM, Elmer B, Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
10: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
11: Radio Mirchi is on.
12: 92.7 FM.
13: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. ઘરે આવી ગયા ગણપતિ બાપ્પા? ચલો આજનો સિલી સવાલ ગઈકાલે મેં દાન પેટીમાં જેટલા રૂપિયા મૂક્યા એના પર છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે ગૂગલ પે ના જમાનામાં આપણે કેશ ભૂલતા જઈએ છીએ. મને એવું લાગે છે કે કદાચ 5-7 વર્ષ પછી આપણે કોઈને પૂછીશું કે ભારત દેશમાં કેટલા રૂપિયાની નોટોની કરન્સી અવેલેબલ છે, તો કોઈને એ પણ નહીં ખબર હોય, કારણ કે આપણે કેશ વિધડ્રો ખબર નહીં કેટલા વર્ષોથી કર્યું જ નથી. મારો સવાલ એ છે, ગઈકાલે મારી સોસાયટીમાં હું ગણપતિ ભગવાનના જ્યારે દર્શન કરવા માટે ગયો ત્યારે ઇન્ડિયામાં જેટલી પણ કરન્સી નોટ્સ અવેલેબલ છે એ બધી નોટોમાંની એક એક નોટ મેં દાન પેટીમાં નાખી. તો મેં ટોટલ કેટલા રૂપિયાનું દાન કર્યું બોલો, જવાબ આપો મને. મારો વોટ્સએપ નંબર છે 8799600983. રિપીટ કરી દઉં, 8799600983. આપો જવાબ. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ. ગુડ મોર્નિંગ. સવાર સવારમાં મેચ કરો.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए. लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे.
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा.
3: और तू तो देवी है ना.
1: इस राखी बोल दो दिल की बात. नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स. ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव.
8: किस्मत बदल दी देखी मैं.
9: आ जा कुड़िए वन गन अपले के सीधे कॉन्सर्ट में.
10: नीर में कम तंदे सारे चट के तेरी वंगदा लाला नाप.
11: Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Virk Live Friday, August 28th, raat 8:30 baje at the brand new venue, Carteret Performing Arts Center. Book your tickets now at carteretpack.com, saiusa.com or sulekha.com.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
16: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
15: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
16: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
17: Celebrate Azadi with Eden Robe and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
18: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
4: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
5: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
4: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, एल्मर बी वॉइड पार्क, न्यू ब्रंसविक। फ्री एंट्री एंड पार्किंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट न्यू ब्रंसविक कल्चरल सेंटर .com। डोंट मिस इट।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
11: लिसनर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Perfect Milchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Milchi, burga.
3: हेलो,
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे
4: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
4: नहीं,
3: है?
4: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं उसमें। अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
4: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये कॉपी मुझे भी भेजना
4: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, हूँ कृतार्थ। आज नो सिली सवाल जरा कह मत हो कि गई काले गणपति बापा ने दान पेटी मा भारत देश मा जेटली पण करेंसी नी नोट्स अवेलेबल छे एनी एक एक नोट में नाखी, तो बोलो टोटल मैं कितना रुपया नु दान करियो छे? मारी साथे हमणा फोन लाइन पर एक लिसनर छे, सांभळो शुं केवुं छे एमनु।
7: गुड मॉर्निंग कृतार्थ अंकल।
6: अंकल? हूँ अंकल? तारी उमर शुं छे?
7: बस
6: 16 छे। તો હું શું લાગે છે હું કેટલા વર્ષનો છું?
7: 25-26
6: યર્સનો હોઉ તો અંકલ કહેવાય એવું?
7: હા,
6: એટલે જેન્ઝી માટે બધા અંકલ જેવું. ક્યાં ક્યાં ભણે છે દોસ્તો?
7: પોલિટેકનિક વાળો છોકરો, થોડાક દિવસ પહેલા તમને યાદ હોય તો કોલ કર્યો હતો.
6: અચ્છા, ત્યારે તો તું અંકલ નતો બોલતો. ઓકે બોલ, શું છે આજનો જવાબ?
7: 688
6: 2688 કેવી રીતે?
7: 1000 અગર આપણે લીગલ ટેન્ડર ગણીએ તો 1 ની નોટ, 2 ની નોટ, 5 ની નોટ, 10 ની નોટ, 20, પછી 50, તો 200 અને 500 અને 2000 ગણીએ તો 2688 થાય.
6: બરાબર, જેટલી નોટો તે ગણી છે એટલી બરાબર છે, પણ તારું કેલ્ક્યુલેશન 100% ખોટું છે. જરાક સરખી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો, મને જવાબ આપો. મારો વોટ્સએપ નંબર છે 8799600983. રિપીટ કરી દઉં, 8799600983. ગુડ મોર્નિંગ.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: देसी खाना,
11: देसी शॉपिंग,
10: देसी कल्चर
11: और देसी एंटरटेनमेंट,
10: बस एक ही डेस्टिनेशन,
11: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल.
12: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
14: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
0: visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Amy Wirk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wirk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
15: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा.
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जैसी वालों तुसी तैयार हो थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमए वर्क आ रहे हैं लाइव
7: किस्मत बदलती देखी मैं
8: हाँ जा कुड़िये वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में
9: नीर में कम तंबे सारे चट के तेरी वंगदा लाला नाप
8: Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Virk Live Friday, August 28th, Rat 8:30 PM at the brand new venue, Carteret Performing Arts Center. Book your tickets now at carteretpack.com, saiusa.com or sulekha.com.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: मिर्ची सुन रहे हैं आप. अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की. This is the Gana Indie Top 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. ये वो शो है जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में दो नई एंट्रीज हैं. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है. सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंट डाउन की गाना नंबर 10 के साथ. गाने का नाम है मूव बॉडी, ज़ारा खान स्केल्स का गाना. चार हफ्तों से है ये बरकरार. पिछले हफ्ते से तीन पोजिशन नीचे ड्रॉप होके मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है साड़ी सुन. आठ हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड इस सारे कॉम्बिनेशन की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है। सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम, चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना। अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना, उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, यानी दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाक के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, दीदार कौर एंड शान की आवाज में। गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री। इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 8।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana sakka bana Murga murga Love is wala murga Mirchi murga
3: Hello
4: Mr. Gagan very good evening बैंक से बोल रहा हूँ आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट वन सेकेंड सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000 वन सेकेंड सर आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने
3: नहीं तो
4: आपने नहीं किया है
3: नहीं
4: तो फिर किसने किया है सर ये सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ
4: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारी सर्विस देखिए कम से कम मुझे पता चला मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले किसने निकाला किस पे शक है आपको
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है
4: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से
3: मैंने दो पैसे भी निकाले
4: तो फिर ये किसने निकाला है यार
3: मैंने कोई पैसा निकाला ना मैं किसी को चेक दिया एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल ओके
4: सर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ हम दे देते हैं ना आपको मुझे क्या पता कौन लेके गया सर
3: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे मेरा नाम लिखा है
4: आपका नाम से क्या होता है यार मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं मुझे नहीं पता आप मुझे क्या बताए आप बतमीजी से बात मत करिए
3: सबको लगा दूंगा लाइन में
4: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए बॉस बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे 15 तारीख को आप नहाए थे आपने मांग निकाली है
3: क्या
4: मांग निकाली है आपने आप क्या क्या निकालते रहते हो यार
3: किससे बात करनी है किस बैंक से बोल रहे हो तुम
5: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है आप रेडियो मिर्ची पे हैं आपका मुर्गा बन गया है 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था
3: ना,
4: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है आपने भड़ास भी निकाली है ना वेत पे भड़ास निकाल दिया आपने
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
9: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2
11: नो
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी
13: कोई भी दिन त्योहार हो उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह ना दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहाँ तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता नया घर लो कराओ मुंह मीठा नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा ये मिठास खुशियों की है ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे ले आपको तो भूल ही गए इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा
14: नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है
18: एक ही होता है
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gana suggest karna ho, baatein batani ho, bindas aake hit me up. Sanju Rathod ki awaaz aisi hai, sunte hi pata chal jata hai it's his song. इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान का दीदार कौर की आवाज में। हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम, चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक। वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकीनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आवर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक। उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJKanika पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद आप गाना पहली बार सुने, लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज। क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: ट्वेंटी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरान Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
7: किस्मत बदलती देखी मैं।
8: आ जा कुड़िए वन गन अप्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
9: नीर में कम तंदे सारे छट के तेरी वंगदा लाला नाप।
8: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartelettpack.com, saiyusa.com और sulekha.com। Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice. This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001, VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: It's 12:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Ghana Indie Top 10.
15: Kanika ke saath on Mirchi.
16: Number 4.

0: अनीशा का हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Follow karna bilkul free hai. Handle is at RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Independent music basically ek artist ko wo mauka deta hai ki tum jo feel karte ho, jo mehsoos karte ho, jo kahani batana chahte ho, apne music ke zariye wo batao. एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियंस देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ही एक गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वी आर वेरी क्विक टू जज। नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एंड एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेबल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो music and meaning को साथ में लेके चलते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे, तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है RJ कनिका। एंजॉय।

इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है मुझे उस गाने के बारे में बताओ, एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi par show ka naam hai Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ka countdown, jisme do nayi entries hain. Gaana number 10 se gaana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Now before we move on to the numero uno song of the week, it's time for what we call
0: Kanika's Cassette Classic.
2: हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज

न कहीं इस गाने में है तन्हा दिल, क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है। ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया। पर दिस सॉन्ग कैप्चर्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? तन्हा दिल, तन्हा सफर। ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अडेप्ट हुआ था। एंड आज 2026 में भी ये फीलिंग इतनी रेलिवेंट है, बिकॉज कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है, मे बी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस कैसेट की जगह हाथ में फोन है, बट फीलिंग तो वही वाली है। और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कैसेट क्लासिक विद दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू। और आज कैसेट क्लासिक, बंदी का नाम है RJ कनेका। एंजॉय।

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कसर क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अशकाय, हम दोनों आपके कसर क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक।

पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर वन।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Amy Virk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Virk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
2: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go!
3: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है. फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं. लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है. हैवान ने कहा अब किलर अक्षय एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन. टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड. और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया. शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती हैं बातें. एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, संग बाय द किंग अरिजीत सिंह. ये है तुझको.
4: नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

जाइए सजना एंड धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर, और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है, जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने, एंड इट स्टार्स सनी देओल, एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है, जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया, और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया। एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग, और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया। कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
3: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Amy Wilk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
7: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
10: It's 1 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
11: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
12: Yeah, Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
13: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
12: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
14: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Simran, tu car chhad ke kithe ja sakdi hai ta? I know Simran, meri galti hai, main tenu time nahi de sakya.
18: Nahi Raj, apne vich pehla warga hun kuch nahi reha. Sab kuch badal gaya. Tu badal gaya, tere dream badal gaye, tere preferences badal gaye. Kuch hai jo inne saalan vich nahi badlya? Hai kuch? Ki?
17: नानक रसमलाई? हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे व्याह तो पहला सी।
18: राज
17: सिमरन,
19: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
20: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। गोली गोज डाउन द ग्राउंड, गोली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
21: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
22: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
23: एक ही होता है।
21: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
24: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

0: इस कमीना को नए जमाने में दोबारा सुनते हुए मुझे एक सवाल याद आ गया।
1: हम पुराने गाने इतने सालों तक अपने पास आखिर क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी उम्र का साउंड ट्रैक होते हैं। और इमरान हाशमी के साथ तो ये बात और भी सच हो जाती है। थिंक ऑफ हिज डिस्कोग्राफी, तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, फिर मोहब्बत, वो लम्हे वो बातें, जरा सा दिल इबादत। MP3 से iPod, iPod से फोन, फोन से स्ट्रीमिंग, फॉर्मेट बदल गया लेकिन गाने नहीं। और अब आवारापन 19 साल बाद उसी दुनिया का एक नया चैप्टर लेके आ रहा है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। लेकिन मैंने इमरान से एक सवाल पूछा, हम तो आज भी उनके गाने लूप पर सुनते हैं, लेकिन क्या वो अपने गाने खुद सुनते हैं?
2: I don't like constantly hear my songs. Like Awarapan, I've heard the songs after almost 18 years. जब मैं फिल्म कर रहा था, तो I revisited the songs, I saw the film. So the thing is with actors, we hear it hundreds of times. So we are, our thing is something else only. We have heard it so much that we've consumed it so much that we kind of detached from it also. Although they are beautiful songs, but जब मैं दोबारा सुनता हूँ, it's just this nostalgic experience that you have. But I think एक जो एक intuitiveness होती है, अगर आपने गाना एक बार सुना and you have this reaction where you want to either hum it or you want to hear it again and again, वो एक तरह से मेरे लिए एक I guess a litmus test होता है whenever we pick up songs for my films. And उसकी melody बहुत simple होनी चाहिए and ज़ुबान पे चढ़नी चाहिए।
1: इमरान का जवाब मुझे बहुत interesting लगा, क्योंकि हम जिन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक एक्टर के लिए तो वो अक्सर सिर्फ एक मेमोरी बन के रह जाती हैं। लेकिन जैसा इमरान ने कहा, उनका लिटमस टेस्ट काफी सिंपल है। क्या मेलोडी सुनते ही क्या आपका दिल करता है उसे गाने का? 19 साल बाद तेरा मेरा रिश्ता अब भी वही कर रहा है। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग ऑन नंबर 15, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस आइकॉनिक सॉन्ग। नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए. लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे.
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा.
3: और तू तो देवी है ना.
1: इस राखी बोल दो दिल की बात. नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स. ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
9: Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy, or
12: confusion ही confusion.
8: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: India ke rang, sur aur swad, sab kuch ek jagah.
13: Experience Janmashtami festival with Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
15: Sunday, August 23rd, 6 p.m. Elmer B. Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
16: अब मिर्ची खा.
18: Radio Mirchi, it's hot.
19: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Suren ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
6: Number 14.

कुछ गाने आपको मदहोश कर देते हैं और कुछ सवाल आपको होश में ले आते हैं। और आजादी के इस हफ्ते मेरे जहन में एक सवाल है, 80 साल बाद इंडिया हमारे लिए आखिर क्या है? क्योंकि 80 साल बहुत होते हैं। हम वो इंडिया नहीं हैं जो 1947 में आजाद हुए थे। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अपना स्पेस प्रोग्राम है, दुनिया भर का पैसा इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे, हम दुनिया के सामने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन फिर इसी इंडिया में ट्रैफिक आपका आधा दिन खा जाता है, इनइक्वालिटी आंखों के सामने दिखती है, करप्शन से रोज सामना होता है, हर बात पर बहस होती है। कभी कभी इस पूरे सर्कस को देखकर दिल से एक आवाज निकलती है, यार हम आखिर कब बदलेंगे? शायद इसी बेचैनी से हमें अपना जवाब मिल जाता है। इंडिया बदल तो रहा है, बस हम उसे और तेज बदलते देखना चाहते हैं। और वो इम्पेशंस, वो एम्बिशन, वही तो है नए इंडिया की आवाज। नंबर 13 पर कहर मचा रहे हैं गुरु रंधावा इन धमाल, लेकिन नंबर 12 पर वो फिल्म जो एक नया इंडिया सामने लेके आई, धुरंधर का ये गाना आरी आरी। नंबर 12।

रीमिक्स बनाने का एक फॉर्मूला सा बन गया है। पुराना गाना उठाओ, नए बीट डालो और गाना पक्का हिट है। लेकिन अगर इतना ही सिंपल होता तो हर रीमिक्स चार्ट बस्टर होता। सच ये है, कुछ रीमिक्स कल्ट बन जाते हैं और कुछ बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस हफ्ते नंबर 11 पर द हाईएस्ट गेनर, वो गाना है जिसकी मैंने काफी क्रिटिसिज्म की है एंड उसके बावजूद इट इज द हाईएस्ट गेनर। चार पोजीशंस अप फ्रॉम नंबर 15 टू नंबर 11 दिस वीक इज आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। देखो चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये वर्जन काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे अब भी नहीं आता। मेरी प्रॉब्लम रिक्रिएशन से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सॉन्ग की यार आइडेंटिटी बदल चुकी है। गुलाम में जब गाना आया था तो वो एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉम्पोजिशन थी, उसकी खूबसूरती उसके ठहरे हुए इमोशंस थे। आप उसे रिक्रिएट कीजिए, अरेंजमेंट बदलिए, साउंड कंटेम्प्रेरी कीजिए, लेकिन उसे 2026 का एक डांस फ्लोर बैंगर मत बनाइए। आप उसकी रूह को ही बदल रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल एक फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन और अरण्या पांडे की कॉल्ड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, उसमें गाना था सात समंदर पार। इसके साथ भी यही एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक आइकॉनिक 90s डांस नंबर जिसे नए जमाने के हिसाब से रीशेप करने की कोशिश की गई। रिजल्ट, वेल इट स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड टू द पॉइंट कि वो गाना मिर्ची टॉप 20 पर फीचर तक नहीं हुआ। सीधा

0: गया गया।
1: Now you understand, जब एक डांस नंबर को आप रोमांटिक गाना बना देते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस गाने पे नाचूं या किसी से प्यार करूं। So what I'm saying is, गाना रिक्रिएट करो, उसकी आइडेंटिटी को नहीं। और इसका प्रूफ देने को तैयार हूं मैं। एक गाना था बार बार देखो मैं, विच वॉज अ रिक्रिएशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर 90s सॉन्ग संग बाय अमर अर्शी। उस गाने में प्रोडक्शन बदली, साउंड बदला, लेकिन उसकी असली जान, वो डांस फ्लोर वाली जान, वो नहीं बदली। एंड दैट्स व्हाई द सॉन्ग स्टिल बिकेम अ चार्ट बस्टर। काला चश्मा द न्यू वर्जन इज माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
2: टॉप 20 रिवाइंड।

0: Train ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
5: जय गुरुदेव. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए. अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Celebrate Azadi with Eden Row and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

कभी सोचा है कि इंडिपेंडेंस डे आते ही हमारे पास कुछ गाने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जय हो, संदेश से आते हैं, ए वतन ये जो देश है तेरा, और आने भी चाहिए। लेकिन अगर पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ देश की तारीफ करना नहीं है, तो शायद कुछ और गाने भी हैं जो इस मुल्क की रूह को, उसकी आत्मा को समझते हैं। ये देश से प्यार का गाना नहीं है, ये उस बेचैनी का गाना है जो कहता है जो गलत है उसे बदलना है, और फिर आता है साड़ा हक।

एक आवाज जो कहती है कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इस इंडिया को सिर्फ हक नहीं चाहिए, उसे आजादियां चाहिए।

कभी घर से, कभी डर से, कभी उन एक्सपेक्टेशन से जो हमारे लिए किसी और ने लिख दी। और फिर जब सब कुछ मुश्किल लगे तो आशाएं हैं।

क्योंकि शायद इस देश की सबसे बड़ी आदत ही यही है, उम्मीद छोड़ने से इनकार, और फिर वो आवाज जो उम्मीद से एक कदम आगे जाती है। ये गाने देश का नाम नहीं लेते, लेकिन शायद देश हम में जो जगाता है उसका नाम जरूर लेते हैं। बेचैनी, हक, आजादी और उम्मीद।

तो इंडिया है। इस काउंटडाउन पर नंबर 9 पर है धमाल का गाना साड़ी, लेकिन अभी के लिए चलाऊंगा गाना नंबर 8 आवारापन 2 से सुबोध शर्मा की आवाज में। यह है बेजनून नंबर 8।

0: तुम्हें बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वॉज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उबर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: Sachin ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabeez wala murga.
1: Mirchi murga. Hello.
2: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान।
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
2: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
1: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
2: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें। आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, बैठा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप। मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हो, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार। मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका। केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है?
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: मेरी बात सुनिए।
2: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
1: बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
6: Food?
5: Yes.
6: Shopping?
5: Yes.
6: Entertainment?
5: Double yes.
6: Aur health fair?
5: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: जैसी वालों, तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
9: किस्मत बदल दी देखी मैं।
10: आ जा कुड़िए, वन गाना प्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
11: नील में कम तंदे सारे चटके, तेरी वंगदा लाला नाप।
10: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28th रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट cartaretpack.com, saiusa.com और sulekha.com.
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
15: अब मिर्ची खा।
16: Radio Mirchi. It's hot.
17: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, विच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए. लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे.
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा.
3: हाँ, और तू तो देवी है ना.
1: इस राखी बोल दो दिल की बात. नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स. ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
11: Amy Wilk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wilk Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
12: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है.
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. नंबर 3.
18: Too many, too many.

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही। 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह।
2: नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे
9: तेरा क्या होगा कालिया

0: Mirchi.
1: Escava la, buscava la, sacava la.
2: Grava la.
1: Murga, murga. La vieta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Could I speak to Manish, please?
3: Speaking.
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से.
3: ओके
4: मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
4: हूँ. मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया. मैं बता दूंगा उनको.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
9: दिस इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट आवर फ्रीडम बट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट, सेलिब्रेटिंग इट्स 25th ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001. VFS ग्लोबल टुडे सर्व्स ओवर 79 गवर्नमेंट्स, ऑपरेटिंग 4250 एप्लीकेशन सेंटर्स इन 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008, we're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport, and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
10: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
12: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
16: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
15: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
17: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.3. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
9: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह.
10: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन्स, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज.
9: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, एल्मर बी, बॉयड पार्क, न्यू ब्रंसविक. फ्री एंट्री एंड पार्किंग. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट न्यू ब्रंसविक कल्चरल सेंटर .com. डोंट मिस इट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Pyari brides, kya do?

0: लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
3: किस्मत बदलती देखी मैं।
4: हाँ जा कुड़िए वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
5: नीर में कम तंदे सारे चढ़ के तेरी वंगदा लाला नाप।
4: अमित जेटली ऑफ साई विश्व इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट carteretpack.com, saiusa.com और sulekha.com। दिस सितंबर 12th एंड 13th जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर एट श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
1: एंजॉय डिलीशियस इंडियन फूड, शॉपिंग, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अ हेल्थ फेयर, किड्स एक्टिविटीज एंड मच मोर। मॉर्निंग 10 AM टू 7 PM।
2: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे अखियों से हाय हाय।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा। है ना
2: सर, देखिए बात तो सुनिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, हाँ, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, the jano.
9: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: देसी खाना,
12: देसी शॉपिंग,
11: देसी कल्चर
12: और देसी एंटरटेनमेंट,
11: बस एक ही डेस्टिनेशन,
12: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
13: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा, तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
19: Goalie goes down the ground, goalie goes out of the ground।
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
18: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: हाँ, और तू तो देवी है ना।
0: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
6: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
5: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islip.
14: Amy Wirk live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Wirk live on Friday, August 28th at Carteret Park.
15: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day aa gayi hai, and for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho, is what Jeetu Raj will tell you, kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain, especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers, unka pyar, unka gussa, wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega, and for God's sake, kisi se bhi story mat suno, don't take any spoilers, film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप

0: अब जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
6: जैसी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
7: किस्मत बदलती देखी मैं,
8: आ जा कुड़िए वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में।
9: भीड़ में कम तंदे सारे चढ़ के तेरी वंगदा लैलानाप।
8: अमित जेटली ऑफ साई विस इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट carteretpack.com, saiusa.com और sulekha.com। Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 5 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Suren ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5.
4: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है. फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं. लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है. हैवान ने कहा अब किलर अक्षय, एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन. टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड. और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया. शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती है बातें. एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह. ये है तुझको नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

0: जाइए सजनायन धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने एंड इट स्टार्स सनी देओल एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान।
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
3: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर, मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है, अब मैं खुद बोल रहा हूँ तो सोच कम से कम।
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान सवाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: स्वर्गीय नहीं तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप।
2: नहीं
3: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका। केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन है?
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप, आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए। आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन ना लें।
2: बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
3: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
7: ओ दलजीत दोसांझ,
8: बड़ी पाजी
7: आप क्या लेने आए हो?
8: शुद्ध देसी घी।
7: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
8: घी टेस्ट के लिए थोड़ो खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
7: नानक घी पाजी,
8: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड सो प्योर इट्स नानक।
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
15: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
16: जर्सी वालों तुसी तैयार हो, थोड़ी किस्मत चमकने वाली है क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव।
17: किस्मत बदलती देखी मैं।
18: आजा कुड़िए वन गन अप्ले के सीधे कॉन्सर्ट में।
19: नीर में कम तंदे सारे छट के तेरी वंगदा लालाप।
18: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इन प्रेजेंट्स एमी विर्क लाइव फ्राइडे अगस्त 28 रात 8:30 से एट द ब्रांड न्यू वेन्यू कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। बुक योर टिकट्स नाउ एट carteretpack.com, saiusa.com और sulekha.com।
20: Only on Mirchi. It's hot.
21: Number 17.
22: To help

0: इस कमीना को नए जमाने में दोबारा सुनते हुए मुझे एक सवाल याद आ गया।
1: हम पुराने गाने इतने सालों तक अपने पास आखिर क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी उम्र का साउंड ट्रैक होते हैं। और इमरान हाशमी के साथ तो ये बात और भी सच हो जाती है। थिंक ऑफ हिज डिस्कोग्राफी, तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, फिर मोहब्बत, वो लम्हे वो बातें, जरा सा दिल इबादत, MP3 से iPod, iPod से फोन, फोन से स्ट्रीमिंग। फॉर्मेट बदल गया लेकिन गाने नहीं। और अब आवारापन 19 साल बाद उसी दुनिया का एक नया चैप्टर लेके आ रहा है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। लेकिन मैंने इमरान से एक सवाल पूछा, हम तो आज भी उनके गाने लूप पर सुनते हैं, लेकिन क्या वो अपने गाने खुद सुनते हैं?
2: I don't like constantly hear my songs. Like आवारापन, I've heard the songs after almost 18 years. जब मैं फिल्म कर रहा था, तो I revisited the song, I saw the film. So the thing is with actors, we hear it hundreds of times. So we are, our thing is something else. Only we have heard it so much that we've consumed it so much that we kind of detached from it also. Although they are beautiful songs, but जब मैं दोबारा सुनता हूँ, it's just this nostalgic experience that you have. But I think एक जो एक intuitiveness होती है, अगर आपने गाना एक बार सुना and you have this reaction where you want to either hum it or you want to hear it again and again, वो एक तरह से मेरे लिए एक I guess a litmus test होता है whenever we pick up songs for my films. And उसकी melody बहुत simple होनी चाहिए and ज़ुबान पे चढ़नी चाहिए।
1: इमरान का जवाब मुझे बहुत interesting लगा, क्योंकि हम जिन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक एक्टर के लिए तो वो अक्सर सिर्फ एक मेमोरी बनके रह जाती हैं। लेकिन जैसा इमरान ने कहा, उनका लिटमस टेस्ट काफी सिंपल है। क्या मेलोडी सुनते ही क्या आपका दिल करता है उसे गाने का? 19 साल बाद तेरा मेरा रिश्ता अब भी वही कर रहा है। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग ऑन नंबर 15, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस आइकॉनिक सॉन्ग। नंबर 15।

0: कुछ गाने आपको मदहोश कर देते हैं और कुछ सवाल आपको होश में ले आते हैं। और आजादी के इस हफ्ते मेरे जहन में एक सवाल है, 80 साल बाद इंडिया हमारे लिए आखिर क्या है? क्योंकि 80 साल बहुत होते हैं। हम वो इंडिया नहीं हैं जो 1947 में आजाद हुए थे। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अपना स्पेस प्रोग्राम है, दुनिया भर का पैसा इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे, हम दुनिया के सामने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन फिर इसी इंडिया में ट्रैफिक आपका आधा दिन खा जाता है, इनइक्वालिटी आंखों के सामने दिखती है, करप्शन से रोज सामना होता है, हर बात पर बहस होती है। कभी कभी इस पूरे सर्कस को देखकर दिल से एक आवाज निकलती है, यार हम आखिर कब बदलेंगे? शायद इसी बेचैनी से हमें अपना जवाब मिल जाता है। इंडिया बदल तो रहा है, बस हम उसे और तेज बदलते देखना चाहते हैं। और वो इम्पेशंस, वो एम्बिशन, वही तो है नए इंडिया की आवाज। नंबर 13 पर कहर मचा रहे हैं गुरु रंधावा इन धमाल, लेकिन नंबर 12 पर वो फिल्म जो एक नया इंडिया सामने लेके आई, धुरंधर का ये गाना आरी आरी।
1: नंबर 12।

रीमिक्स बनाने का एक फॉर्मूला सा बन गया है। पुराना गाना उठाओ, नई बीट डालो और गाना पक्का हिट है। लेकिन अगर इतना ही सिंपल होता तो हर रीमिक्स चार्ट बस्टर होता। सच ये है, कुछ रीमिक्स कल्ट बन जाते हैं और कुछ बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस हफ्ते नंबर 11 पर द हाईएस्ट गेनर, वो गाना है जिसकी मैंने काफी क्रिटिसिज्म की है एंड उसके बावजूद इट इज द हाईएस्ट गेनर। चार पोजीशंस अप फ्रॉम नंबर 15 टू नंबर 11 दिस वीक इज आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। देखो चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये वर्जन काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे अब भी नहीं आता। मेरी प्रॉब्लम रिक्रिएशन से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सॉन्ग की यार आइडेंटिटी बदल चुकी है। गुलाम में जब गाना आया था तो वो एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉम्पोजिशन थी, उसकी खूबसूरती उसके ठहरे हुए इमोशंस थे। आप उसे रिक्रिएट कीजिए, अरेंजमेंट बदलिए, साउंड कंटेम्प्रेरी कीजिए, लेकिन उसे 2026 का एक डांस फ्लोर बैंगर मत बनाइए। आप उसकी रूह को ही बदल रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल एक फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन और अरण्या पांडे की कॉल्ड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, उसमें एक गाना था सात समंदर पार, इसके साथ भी यही एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक आइकॉनिक 90s डांस नंबर जिसे नए जमाने के हिसाब से रीशेप करने की कोशिश की गई। रिजल्ट, वेल इट स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड टू द पॉइंट कि वो गाना मिर्ची टॉप 20 पर फीचर तक नहीं हुआ।

0: Now you understand. जब एक डांस नंबर को आप रोमांटिक गाना बना देते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस गाने पे नाचूं या किसी से प्यार करूं। So what I'm saying is, गाना रिक्रिएट करो, उसकी आइडेंटिटी को नहीं। और इसका प्रूफ देने को तैयार हूं मैं। एक गाना था बार बार देखो मैं, विच वॉज अ रिक्रिएशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर 90 सॉन्ग संग बाय अमर अर्शी। उस गाने में प्रोडक्शन बदली, साउंड बदला, लेकिन उसकी असली जान, वो डांस फ्लोर वाली जान, वो नहीं बदली। एंड दैट्स व्हाई द सॉन्ग स्टिल बिकेम अ चार्ट बस्टर। काला चश्मा द न्यू वर्जन इज माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
5: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
6: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
7: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
12: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 10।

कभी सोचा है कि इंडिपेंडेंस डे आते ही हमारे पास कुछ गाने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जय हो संदेश से आते हैं, ए वतन ये जो देश है तेरा, और आने भी चाहिए। लेकिन अगर पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ देश की तारीफ करना नहीं है, तो शायद कुछ और गाने भी हैं जो इस मुल्क की रूह को, उसकी आत्मा को समझते हैं। ये देश से प्यार का गाना नहीं है, ये उस बेचैनी का गाना है जो कहता है जो गलत है उसे बदलना है, और फिर आता है साड़ा हक।

एक आवाज जो कहती है कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इस इंडिया को सिर्फ हक नहीं चाहिए, उसे आजादियां चाहिए।

कभी घर से, कभी डर से, कभी उन एक्सपेक्टेशन से जो हमारे लिए किसी और ने लिख दी, और फिर जब सब कुछ मुश्किल लगे तो आशाएं हैं।

0: क्योंकि शायद इस देश की सबसे बड़ी आदत ही यही है, उम्मीद छोड़ने से इनकार, और फिर वो आवाज जो उम्मीद से एक कदम आगे जाती है। ये गाने देश का नाम नहीं लेते, लेकिन शायद देश हम में जो जगाता है उसका नाम जरूर लेते हैं। बेचैनी, हक, आजादी और उम्मीद, ये भी तो इंडिया है। इस काउंटडाउन पर नंबर 9 पर है धमाल का गाना साड़ी, लेकिन अभी के लिए चलाऊंगा गाना नंबर 8 आवारापन 2 से, सुबोध शर्मा की आवाज में। यह है बेजुनून।
1: नंबर 8।

0: तुम्हें बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वॉज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उभर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक,
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. Hello.
2: Could I speak to Manish please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
2: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया. मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
6: क्या बनाया आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं. आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है. खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर 1, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर. सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
11: द This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint. Celebrating its 25th year since its inception in 2001, VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
14: Amy Wilk Live in New Jersey. Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Wilk Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
15: Grab your tickets at SaiUSAInc.com or Sulekha.com.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार
16: अब मिर्ची खा
18: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
19: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, विच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए. लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे.
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा.
3: और तू तो देवी है ना.
1: इस राखी बोल दो दिल की बात. नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स. ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy or
10: confusion ही confusion.
7: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
14: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह.
15: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद Krishna Leela, traditional dances, live music, bhajans, delicious food, shopping and kids activities.
14: Sunday, August 23rd, 1 to 6pm, Elmer B, Boyd Park, New Brunswick. Free entry and parking. For more information, visit newbrunswickculturalcenter.com. Don't miss it.
16: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
17: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
16: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
18: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
19: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
18: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
19: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस. एमी Work live in New Jersey. Amit Jaitley of Sci USA Inc. presents Amy Work Live on Friday, August 28th at Carteret Park.
3: Grab your tickets at sciusainc.com or sulekha.com.
6: Listener, mein back to back gana sunega.
18: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
20: Number 3.

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही, 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह।
2: नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: At 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रो एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू यूएसए फ्रॉम ऑगस्ट 6 टू 16th।

0: பேச்சு.
1: Happy Independence Day, everybody. Well, independence का मतलब सिर्फ आजादी मिलना नहीं, आजादी का मतलब है अपनी choice की responsibility लेना. क्योंकि freedom में free है, responsibility बिल्कुल free नहीं. Happy Independence Day once again, and with that I start today's Club Mirchi Independence Day special with DJ Richard and Mirchi Oyontika. Jai ho.

0: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।
1: नौजवान

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
5: सिमरन, तू कार चढ़ के किधर जा सक रही है? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकिया.
6: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया. तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए. कुछ है जो इन सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
5: नानक रसमलाई. हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे व्याह तो पहला सी.
6: राज
5: सिमरन.
7: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: This Independence Day, we celebrate not just our freedom, but India's global footprint, celebrating its 25th year since its inception in 2001. VFS Global today serves over 79 governments, operating 4,250 application centers in 169 countries worldwide. Since 2001, we've processed over 557.09 million applications, and since 2007, captured more than 240.14 million biometrics, connecting people and nations. A trusted partner to the government of India since 2008. We're proud to serve over 5 million diaspora Indians with visa, passport and consular services in the United States of America. This 80th Independence Day, VFS Global salutes the spirit of India, partnering governments, providing solutions. For more, visit www.vfsglobal.com.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: जर्सी वालों, तुसी तैयार हो? थोड़ी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि एमी वर्क आ रहे हैं लाइव.
12: किस्मत बदल दी देखी मैं.
13: हाँ जा कुड़िये, वन गन आप लेके सीधे कॉन्सर्ट में.
14: नीर में कम तंदे सारे चटके, तेरी वंगदा लाला नाप.
15: Amit Jaitley of Sai USA Inc. presents Amy Virk Live Friday, August 28th, Kudat, 8:30 PM at the brand new venue, Carteret Performing Arts Center. Book your tickets now at carteretpack.com, saiusa.com, or sulekha.com.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
18: अब मिर्ची खा.
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
21: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.

मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, लेकिन मम्मी के सामने मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोलने से पहले उनका ही वाईफाई पासवर्ड याद से पूछ लेना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्लब में जाइए।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
1: इस राखी बोल दो दिल की बात। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा। टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244 एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
11: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।
5: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
11: Ladies and gentlemen.

फ्रीडम को सिर्फ अपना राइट समझेंगे, इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट रहेगी, है कि नहीं? क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका के साथ, वेलकम बैक पीपल। थोड़ा ड्यूटी भी और थोड़ा डिग्निटी भी जरूरी है, थोड़ा दूसरों के लिए स्पेस भी बनाओ और नाचो हमारे साथ जब तलक तू बोले तब तलक।

सिर्फ एक ही गुजारिश है, इंडिपेंडेंट होने से अपनी आवाज को आप सुन सकते हो, लेकिन इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनो कि दूसरों की आवाज को ही म्यूट पे डाल दो। क्लब मिर्ची जारी है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका के साथ। आप चाहे या ना चाहे, हम हैं आपके साथ। हैप्पी

थर्ड एंड मिर्ची ऑयो उनका फ्रीडम का एक अंडररेटेड बेनिफिट तो यही है कि अपना म्यूजिक खुद चूज करो यार. क्लब मिर्ची पे आप कर सकते हो हमारे साथ. डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को फॉलो करो एंड पुट आउट रिक्वेस्ट्स इफ यू वांट.

सिर्फ मैप पे एक शेप है, ये वो जगह है जहाँ हमारे चॉइसेस का इम्पैक्ट किसी और की लाइफ पे पड़ता है। सोचो फिर आजादी सेलिब्रेट करो, आज तो तन्हा नहीं हो आप। क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Saad Jeetu Raj. Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeetu Raj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज.
1: साथ Jeetu Raj, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, we're gonna go.

इसका मतलब हर बात पे डिसएग्री करना नहीं होता, कभी कभी अपनी फेवरेट ओपिनियन को भी बोलना पड़ता है, भाई तू गलत है। दैट्स फ्रीडम टू, लेट्स एक्सरसाइज दैट, लेट्स ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची, आयोंतिका दिलजीत दोसांझ इन द हाउस, लेडीज एंड जेंटलमैन।

का सबसे बड़ा मैजिक, आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो। बस एक डिस्क्लेमर है, एक्सक्यूजेस का पेन यूज करके बेस्ट सेलर नहीं बनना है, ठीक है? और जादू तो मिलता ही रहेगा आपको क्लब मिर्ची पे। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन द